यारी का अफसाना, यार पे वक्त पड़े तो परखा जाता।

बिग गुड मॉर्निंग टू यू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मेरा नाम है अभी और मैं आपके साथ रहूंगा 11 बजे तक. आई होप इस संडे के ब्यूटीफुल दिन की शुरुआत आप इंजॉय कर रहे हैं. अगर आप अभी अभी उठे हैं देन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. कुछ ब्यूटीफुल से गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून विथ मी. आई विल बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692 3788.
2: Official media partner Sunrise Radio.
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है Abby and guess what? 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ़ यू हैवन डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू. उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

Welcome back after this beautiful and classic flashback only on Sunrise Radio 103.2 FM. और मुझे लगता है कि जरूर कुछ पुरानी यादें ताजा हुई होंगी इस गाने के साथ साथ. Well, right now मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पर. After the news और तब भी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा. तब तक एंजॉय कीजिएगा इन ब्यूटीफुल गानों को और एंजॉय कीजिएगा इस ब्यूटीफुल स्टार्ट संडे मॉर्निंग की. I'll see you on the other side. Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM, aap sun rahe hain right now. This is Abby this side. And I hope ki aap enjoy kar rahe hain in gaanon ko. Ji haan, 11 baje tak main aapke saath rahunga aur koshish karunga ki acche se gaane aapke liye main play karunga. Aur kuch meethi meethi baatein bhi hum karenge. The next song is right now, specially dedicated to you.

0: हाँ दिल्ली से हूँ।
1: Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM, आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now, specially dedicated to you.

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है एबी एंड गेस व्हाट, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं, आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ़ यू हैवन डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

Welcome back after the classic flashback with Sunrise Radio 103.2 FM. What a beautiful classic song here. Well, right now मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तब भी beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. Stay tuned till 11 o'clock.

Welcome back after yet another beautiful hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abhi This Side. 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और once again a big good morning to you. और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से प्यारी तरह से जा रही है. इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

उसे क्या मारे जिसका रब है रखवाला। वो अपने मददगारों का मुहाफिज है अल्लाह।

0: ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

Welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मैं आशा करता हूँ कि इस गाने को आपने काफी पसंद किया होगा, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आप हमें सुन सकते हैं. आई होप यू नो दैट. हमारा ऐप है ना, सो गूगल प्ले नहीं तो ऐप स्टोर पर आप जा सकते हैं एंड हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फ्री. तो जरूर जाइएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा और दुनिया के किसी भी कोने में आप अगर हैं तो हमें सुन सकते हैं हमारे ऐप के द्वारा. एट द सेम टाइम हमारी वेबसाइट है ना, www.sunriseradio.fm. लॉग ऑन कीजिएगा, सारे अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट्स जो हैं, सब कुछ, सब इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं. एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी आप कर सकते हैं हमारे रेडियो के द्वारा. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड. द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल क्लासिक फ्लैशबैक ऑन योर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम. राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, व्हिच इज आफ्टर द न्यूज़, और तभी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा. सो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड.

0: once again, welcome back after the hit of the hour, only on Sunrise Radio 103.2 FM. And once again, a big good morning to you. मैं आशा करता हूँ कि इस दिन की शुरुआत आपकी काफी अच्छी तरह से जा रही है. इस शो के मेरे आखिरी आवर में आपका स्वागत है. जैसे मैंने कहा कि 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम. काफी ब्यूटीफुल गाने आपके लिए हाजिर हैं इस आवर में भी. सो स्टे ट्यून्ड.
1: मस्कीन लोहार आज पूछ जांदा जी, मेरे ते जाट ने हुक्म दिता नफर नु मेरी घोड़ी तैयार करके लिया लाओ फल कनीम कसाईया. वो केड़ी घोड़ी सी?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

What a lovely song. क्या गाना था यार. इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM. And the next song is also dedicated specially to you.

0: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
1: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
2: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
1: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
2: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
1: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274733732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए हार।
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Welcome back after the classic flashback. Only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है Abby और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था. But unfortunately, it's time to go. मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर. Till then, take care of yourself, your family, your loved ones. Be productive, be creative, and take care.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chooza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: quality home to rent.
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: क्या आप किसी खास तकरीब पर एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
3: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां घूमी ते पैरों ने जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकन तीला सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
4: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: Now, live on the decks, bringing you the hottest sounds. Let's go
1: on Sunrise Radio.
2: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
3: Salam namaste. Salam namaste.
4: जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा,
5: हुए
6: हम शरीफ क्या हुए,
7: मैं वापस
6: पूरी दुनिया ही बदमाश।
8: देखो मैं हूँ कहाँ,

0: अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते श्रीकाल खुश आमदीद वेलकम टू सनराइज रेडियो ऑन 100.6 एफएम 103.2 एफएम क्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर आपका होस्ट दोस्त यहां भी हाजिर है मेरा नंबर है आई एम हियर टिल 11 का वीर विशाम और आप सबके नाम रंगे महफिल का प्रोग्राम है एंड टुडे इज संडे इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू यू ऑल एंड टुडे इज द 4th ऑफ अक्टूबर 2026 द वेदर हैज बीन सच अ लवली टू बी रोमांटिक मौसम है कहां पे जा रहे हैं कहां पे आ रहे हैं व्हाट इज योर ब्यूटीफुल प्लान फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इफ यू वांट टू गिव मी अ कॉल It's 01274-30-76-76 and I'm going to be introducing the hit of the hour. I hope you're going to enjoy this wonderful, wonderful tune. One of my favorite tune. Let's start the track with a bang and here we go.
1: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: Right, and that was a wonderful tune, or happening enjoy Kia Oga, definitely. And that was one of my favorite tune, hit of the hour. And what an amazing track. And you have to have time check, which is very, very, very, very important. Or our those things, you have a time check.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right time in the studio is 12 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown, keep a lockdown with the Parviz Khan. You have a choti si nanni munni si break ke break foran, but I will mention you all your names. Hello, hi, kitna, whichever it's gonna be. And line yahan pe chamak rahi hai, damak rahi hai, aur aap doston ka pyar hai, mohabbat hai, chahat hai, khalus hai ki aap hame yaad kare. And you're listening to Sunday Radio on 103.2 FM, 100.6 FM across the West Yorkshire, and not forgetting DAB Plus across the West Yorkshire. Aur bahut bahut shukriya aapka bhi. Aur yahan pe nikki ji break hogi, aur keep it locked.
2: Sunrise and music.
3: ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਟੈਲੀਫੋਨ 0124-488-935
0: यहाँ भी वाला साथ देने वाजे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें याद किया ऑल द वे फ्रॉम होडिसफील्ड से. बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू हुई, बड़ा ही अच्छा लगा. और देन वी हैड अ लवली कॉल फ्रॉम शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. सितारा जी ऑल द वे फ्रॉम नेल्सन से, और उन्होंने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है. सिमी जी आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी. लाइनें काफ़ी चमक रही हैं, और थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा नाम लूंगा आप सबका भी जो हमारा साथ दे रहे हैं. यस, यस्टरडे वाज वन ऑफ द शो एंड हैपन इन ब्रैडफोर्ड एज़ वेल, और हमें अच्छा लग रहा है. और हंसराज हंसन से साथ मुलाकात हुई द शो एज़ वेल. डिड यू एंजॉय द व्हेन डिड यू एंजॉय द शो? और ये वो गीत था जो मैंने सोचा कि आपके लिए मैं पेश करूँ, क्योंकि लेट्स रिफ्रेश द मेमोरीज. एंड यस, इट्स ऑल अबाउट यॉर्कशायर, इट्स ऑल अबाउट वीकेंड, इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द ट्रैक एज़ वेल एंड सेलिब्रेटिंग द लाइफ ऑल अबाउट. और ये मैं गीत में पेश करने जा रहा हूँ आप सब दोस्तों के लिए होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि इस गीत को आप इंजॉय करेंगे. एंड यस, फॉर यू एंड द पर्सन बिहाइंड यू एज़ वेल, अब्दुल, दिस ट्रक इज गोना गो आउट टू यू एज़ वेल. इफ यू आर ड्राइविंग एंड ड्राइव विद अ कैर, एंड इफ यू आर आउट एंड अबाउट, मेक श्योर स्टिक अराउंड विद द सनराइज रेडियो. और ये वो खूबसूरत गीत है, एंजॉय द ट्रैक.

Brian, that was a wonderful tune. Hans on the vocal. और आपने पसंद किया. बहुत बहुत शुक्रिया. आप सबके भी लाइनें काफ़ी जो है बिजी हैं. एंड डू बेयर विद मी एंड बिकॉज आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीबॉडी. ये ना सोचें कि यार हम फ़ोन करते हैं वो फ़ोन ही उठा रहे हैं. तो मुझे यहाँ पे फ्लश हो गया है और आई एम गेटिंग हाई वॉल्यूम कॉल्स. तो आपने हमारा साथ देंगे. यहाँ पे हमने पेश करनी है अजान, पेश करनी है ईशा की अजान. और कीप इट लॉक्ड विद द सुंदर रेडियो 103.2 FM एंड 100.6 FM क्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर. और बहुत बहुत शुक्रिया. और यहाँ पे बड़े अदब अदाब से बड़े प्यार के साथ हमने अजान पेश करेंगे. कीप इट लॉक्ड विद द सुंदर रेडियो.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Moving on to the beautiful Chaka, I'm going to be playing for Sada Ji. Bobo Shukriya, aapka bhi aapne hamara saath dene. From Bradford se hain, aur Gidan bhai, aur hamare papi jaan Sumitra ji hain, all the way from Milton Keynes se hain. Bobo Shukriya, aapka bhi aap hamara saath dene. Sayyid Ehsan saab hain, aapka bhi shukriya ada karta hoon ki aap bhi London mein hamara program suna ja rahe hain. Bobo Shukriya, aapka bhi. Aur Ruby ji hain. आप ही हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं लंदन में और हमें ये खुशी हो रही है कि लंदन के काफ़ी दोस्त आ रहे हैं और यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑन लंदन एज वेल और ये हमारे लिए खूबसूरती है कि आप दोस्तों का प्यार मोहब्बत है चाहत खलूस है कि आप भी हमें पसंद करते हैं इंजॉय करते हैं और ट्यून इन किया हुआ है तो आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँ जा रहा हूँ और ये गीत आपके लिए भी होगा और रजा शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी ये गीत आपके लिए भी होगा और थोड़ी देर के आपके भी नाम लूँगा आपके दोस्तों के नाम लूँगा और आप भी पसंद करेंगे इंजॉय करेंगे और मुझे ये पता लगा है कि काफ़ी दोस्त आज पार्टी वगैरह हो रही है तो आई वॉज इन्वाइटेड टू वन ऑफ द पार्टी टुडे बहुत ही खूबसूरत पार्टी थी वहाँ पे और एक बहुत ही खूबसूरत पार्टी हो रही है तो क्योंकि मैंने प्रोग्राम करना था वहाँ पे एंड आई कुड नॉट टेक अ डे ऑफ और मैं डे ऑफ नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रोग्राम करना था तो वहाँ पर आई कुडन गो और वहाँ पर एक खूबसूरत पार्टी हो रही है और बहुत अच्छा लगा आप ही हमारा साथ दे रहे हैं और हम पार्टी छोड़ के आए आप दोस्तों के लिए और ये भी खूबसूरती है कि आपका दोस्तों का प्यार है मोहब्बत है खलूस है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और ये सुन के अच्छा लग रहा है और जो पार्टी हो रही है आपका भी शुक्रिया करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया और आप मुझे जो है कि छेड़ छड़ावा कर रहे हैं अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं हमने उनको देखा हुआ है मेरे भाई कोई मसला नहीं पिछले साल में हमने उनका शो कराया था और वो शो हुआ है और बड़ा ही ज़बरदस्त कमाल के शो हुआ है और वो आप भूल गए मेरे ख्याल में कोई बात नहीं ऐसा होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं कोई मसला नहीं और एनीवे ये गाना आप इंजॉय करें और आपकी पूरी फैमिली के लिए होगा बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी बहुत ही प्यारी बहना है हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं सबा आरजू जी ये गीत आपके लिए होगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट और हम ही आपके दुख में शामिल हैं यू नो अलोन बिलीव करें कि आप अलोन नहीं हैं मैं भी आपके साथ ही हूँ और दुख में शामिल हूँ और बहुत अच्छा लगा आप हमें याद किया और ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ एंजल चैक

राइट दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून और यहाँ पे आर्ट ब्रेक नहीं है, पता नहीं क्या वजह है और कोई मसला नहीं और हम हैं ना इसके लिए और बहुत अच्छा लगा नदीम मंसूर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला गीत आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। चौधरी फिराज साहब आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए, राजा शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि आप भी इतना खूबसूरत टाइम जो आपके साथ है। और हमारे जानी साहब, जानी वेलकम वेलकम जी एनो खुश आमदीद, आपके लिए भी हम दुआ गो हैं और मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप पसंद करेंगे। और अतीका साहिबा हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने सब सुनने वालों को सलाम पेश किया है और मैं कहूँ वाले सलाम और सब सुनने वालों को आपने सलाम पेश कर रहे हैं। और आपको सखी सीढ़ी के लिए गीत आने वाला है, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये मैं गीत में पेश करने जा रहा हूँ आप दोस्तों के लिए होगा और थोड़ी देर के बाद मैं दोस्तों का भी नाम लूँगा आपकी लिस्ट का जो है यहाँ पर और वो भी आ गई है लिस्ट और वहाँ पर आपने शिरकत कर रहे हैं तो मैं लिस्ट आपकी पढ़ लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं। और ये खूबसूरत गीत है जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, बहुत ही नायाब गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है और बहुत चलचल गीत है और बड़ा ही अच्छा लगेगा आपके लिए होगा और आपके दोस्तों के नाम में होगा। ऑल द होमोश लिस्टनर्स, नो फॉरगेट ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिस्टनर्स, एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून, एंजॉय।

Right, and that was a wonderful tune और one of my favorite tune आपने enjoy किया और हमें अच्छा लग रहा कि आपने गाने को enjoy करने पसंद करें और moving on to another beautiful track and यहाँ पे आपने information देनी है थोड़ी जी information होगी आप दोस्तों के लिए and yes the Sunrise Radio Listener Choice Award 2026 are coming soon celebrating the businesses, organizations, venues, artists you love voting will be exclusive to the Listener Club members so join free now at sunrise.radio keep listening for more details and that is the beauty of Sunrise Radio are getting bigger and better day by day going upward and forward and yehi wo khoobsurti hai aap sab doston ka pyar mohabbat hai ki aap hame join karte hain and I want you to all everybody to make sure download the Sunrise app as well free of cost or usko aap download kare Apple Play Store or Google Play Store so tell your family tell your friend tell everybody make sure you tune in Wednesday between hours of 8 and 11 and Sunday between hours 8 and 11 aur ye geet mein pesh karne janam aap sab ke liye hoga aur especially ye geet aap doston ke liye hoga Chaudhry Faryaz sahab aapke liye aur aapki puri team ke liye hoga mujhe umeed hai yakeen ki aap enjoy kare Chaudhry Aashiq Faryaz sahab hain aapki team mein hain aur Parvez Khan hain Mehboob Lai sahab hain Tariq Zulfi sahab hain Javed Mir sahab hain Tariq Bhatti hain Shakir sahab hain Ira Khan hain Chaudhry M Usman hain Safiullah hain Wajid bhai from Hodispur se hain Chaudhry Manish sahab chaki wale hain aur Khwaja Mohammad Shafiq sahab hain और not forgetting मोहम्मद रफी साहब हैं अतिकर साहब हैं और चंगीर साहब हम जीज बलि से ये आपके दोस्तों के नाम हैं और नशीन जी ये गीत आपके लिए भी अगर आपकी पूरी टीम के लिए गया फजाना जी हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी ये गीत मैं आप दोस्तों के लिए पेश करने जा रहा हूँ मुझे उम्मीद और यकीन है इस गीत को आप इंजॉय करेंगे बड़ा ही खूबसूरत गीत है बड़ा ही नायाब गीत है एंड समथिंग यूनिक समथिंग डिफरेंट एंड आई होप यू कैन एंजॉय द ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल द खामोश लिसनर्स नॉट फॉरगेटिंग ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स वेल एंड इफ यू आर ड्राइविंग एंड ड्राइव विद अ कैन इफ यू आर आउट एंड अबाउट Make sure you stick around with the Sunrise Radio. And this is the song I'm going to play. Enjoy!

0: Right, that was a wonderful tune और आपने enjoy किया और बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल भाग भाग हो गया कि आपने गाने को पसंद करें, enjoy करें। और सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने गाने को पसंद करें। एंड यू वर इन द पार्टी एज वेल, यू वर इन द शो यस्टरडे दैट व्हाट हैपेंड, एंड क्या कहने जी, क्या कहने, बहुत अच्छा लगा और आपने भी enjoy किया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल योर लव एंड योर सपोर्ट। और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to Sunrise Radio clock, it's 46 minutes past the 8 in UK. Good evening, good afternoon, good night, wherever you are. Keep it locked and keep it locked down with the Parviz Khan. You have a short break, for and bother, I'm going to be playing for you a flashback. Hoga, bahut hi naya, bahut hi khoobsurat geet hoga, aur aap sab sunne walon ke liye hoga. Keep it locked and keep it locked down with the Parviz Khan.
2: Sunrise Music.
3: बंगा नी कोई मजदूरी नी, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, जे तुसा पुराना सोना बेचना है बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-488-935।
1: This October, Bollywood meets Bhangra in Manchester. In-house Productions presents Bollywood meets Bhangra 4, featuring Dutch sensation Jenna Jia performing live. Enjoy Bollywood, Bhangra, hip-hop, Afro and R&B, plus DJs, dancers and dhol players. Friday the 23rd of October, from 9 p.m. till late, at Area, 50 Sackville Street, Manchester. Entry is free. Photo ID required. For information, call 0775-3363-926. Official radio partner, Sunrise Radio.
4: Music. It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

भी आपके लिए भी होगा, आपने हमें याद किया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। वेलकम जी एन खुश आमदी कहेंगे आपके लिए भी, हम दुआ गो हैं। और शबा आरज़ू जी हमारी बहुत प्यारी बहना है, आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अधिकार साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं। और चौधरी फरियाज साहब हैं, नदीम मंसूर साहब हैं, और रजा शुहेब भाई हैं, वाजिद भाई हैं, आपका भी शुक्रगुजार हूँ। ममनून आपका भी। और शमा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि। और सिमी जी हैं, आपकी पूरी फैमिली को वेलकम जी एन खुश आमदीद। और आने वाला गीत आप दोस्तों के लिए भी होगा, एंड आई होप यू गोना एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून। और हमें अच्छा लग रहा है कि जो हमारे दोस्त हमें याद कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और हमें हाल वाल पूछ रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपका बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, और आपसे गुफ्तगू करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और आपको हमें बहुत अच्छा लगा। आपने भी यस्टरडे को आपने इंजॉय किया, जो बहुत खूबसूरत एक शो हुआ, बड़ा ही नायाब शो हुआ, बहुत कमाल का शो हुआ, आपने भी इंजॉय किया और हम भी इंजॉय किया कि हम भी वहाँ पे थे। और मुझे गाना भी याद आ गया। एनीवे देखते हैं क्या होता है, वो गाना मैं पेश करूँगा या नहीं पेश करूँगा, और ये गाना मैं आप दोस्तों के लिए पेश करूँगा। मुझे उम्मीद है यकीन क्या इस गीत का आप इंजॉय करें, बड़ा ही नायाब गीत है, वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून है। सोनी जी हैं ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंघम, ये गीत आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। ऑल द खामोश लिसनर्स, नॉट फॉरगेटिंग ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स वेल, और नॉट फॉरगेटिंग जो लंदन में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है, वेस्ट लंदन में, आई नो यू आर लिसनिंग टू मी, आई नो यू आर लिसनिंग टू मी। और ये वो गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल योर लव एंड योर रिस्पेक्ट एज वेल, हमें अच्छा लग रहा है। और हमारे एक बहुत ही खूबसूरत कॉलर हैं, लंदन में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनसे भी मुलाकात हुई यस्टरडे, और बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने इतनी हौसला अफजाई की, दुआएं की हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ, एंजॉय द ट्रैक।

0: राइट, दैट वाज द हिट ऑफ द आवर और आपने इंजॉय किया। ये सुन के मुझे खुशी हो रही है कि जो भी मैंने गाने पेश किए हैं कि आपने सब ने इंजॉय किए हैं। और यहाँ पे मैंने करना है टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सब के लिए। और यहाँ पे टाइम चेक, और टाइम चेक यहाँ पे
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Right, time check in the studio is 11 minutes past the 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked down and keep it locked down with the Parviz Khan. Yahan pe thodi der ke baad yahan pe choti si break hogi, break ke foran baad we'll gonna go on to the live calls. Live call ka silsila hoga, usme aapne shirkat karni hai. To mujhe acha lag raha ke aap hamara saath de rahe hain. Aur yahan pe humne kya karna hai, in meantime what I will do, I will mention you a bit of information अबाउट सनराइज रेडियो, ठीक है। और हमने ये तो कर चुके हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है आप दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेशन पेश करने जा रहा हूँ। एंड आई होप यू आर कनेक्टेड विद मी, आर यू कनेक्टेड विद मी, एंड आई वांट यू टू टेल योर फ्रेंड्स फैमिलीज टू डाउनलोड द सनराइज ऐप एंड लिसन टू द सनराइज ऐप एज वेल। और ये बहुत ही ज़रूरी है आप सब दोस्तों के लिए, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सनराइज रेडियो। एंड सनराइज रेडियो इज़ ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग डे बाई डे माशाल्लाह। एंड थैंक यू फॉर ऑल दोस्त beautiful listeners jo hamara saath de rahe, all those khamosh listeners, no forgetting all the chori chori chupke chupke listeners hai. Aur yahan pe humne choti si break karni hai kyunki hamare jo यहाँ पे हमारे कम्यूटी जी कह रहे हैं मुझे कि आठ ब्रेक अभी कर लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया कम्यूटी जी, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कम्यूटी जी। ये आठ ब्रेक आपने लॉक करनी है यहाँ पे, और आप लॉक कर दें।
2: जुतियां सस्ता सोना नहीं मिलिया।

0: राइट लेडी एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल, और यहाँ पे आगाज होने वाला है और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है और किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारे चौधरी फयाज साहब ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान से वेलकम कहेंगे, जी कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, और यहाँ पे इनके लिए ये अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
1: रस्सी
0: ने रस्ता होना लोहा बनाई खोला, क्या हाल है? पिंगा नहीं ना टूट जाने, क्या हाल है? क्या हाल अजकल टेक्नोलॉजी है ना पापे, टेक्नोलॉजी जी।
1: नौशीन जी ने, सिमी जी ने, अम्मा जी ने, गुजाला बाजी ने, उम्मे कुलसूम जी ने, शाह परी जी ने, सतारा जी ने, फुफी साहिब तना, भाभी साहिबा ने, गिदड़ भाई ने, फरजाना जी, सहिमा जी, सोनिया जी, इन्होंने सब मेरा बहुत बहुत सलाम, सबा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हौसला अफजाई करने ने, मोहतरम आमर भाई ने, महबूब लाई साहब ने, मुदसर साहब ने, अजीत सलीम साहब ने, चौधरी मनीर सिंह चक्की आले ने, शकील साहब ने, ईरा साहब ने, वाजिद भाई ने, अयुब चौहान साहब ने, जावेद मीर भाई ने, अब्दुल कयूम भाई ने, नवीद राणा साहब ने, जनाब तारिक बट साहब ने, और चौधरी मुजफ्फर साहब ने, चौधरी आसफ रियासत साहब ने, डॉक्टर चौधरी मोहम्मद मालिक साहब ने, चौधरी रुखसार साहब ने, अहम खान साहब ने, नदीम मंसूर साहब ने, राजा वक्का साहब ने, राजा गुलकुरैन साहब ने, जफर अली हीरो साहब ने, महमूद साहब ने, राजा शोएब साहब ने, उन्होंने शुक्रिया उन्होंने याद किया, और अनिश भाई ने लीड विच, और तमाम दोस्तों साथियों भरावों ने बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: बिस्मिल्लाह करा एक इल्तिजाइया शेर
0: जी,
1: जिन्हें ने के तेनों वास्ता ही कदी रुसिया ना, तू ना करम कमाया ते रुल जासा, है भी गमा ने चाही दोपहर यार अब केंदा राकब है मेरी इस जिंदगी विच, वो पर दिता है लोका ने जहर यार अब।
0: वाह क्या कहने।
1: अच्छा फिर बिस्मिल्ला करा, मुद्दतों तेरी तलाश है थी, मुद्दतों तेरी तलाश है थी, मुश्किल नाल हुन मुश्किल नाल ने लब्बा हुन रुसिया ना, तेरी लोड़ में बुत्ता मिचरिया करदा लाके कुफर ना दब्बा हुन रुसिया ना।
0: वाह
1: तेरे जिक्र अंदर मेरिया लब्बा उत्ते तेरा ही तेरा नाम ही फब्बा हुन रुसिया ना, कर दे करम इस राकब गरीब उत्ते, ओ मेरे सोने रब्बा उन रुसिया ना।
0: आह क्या कहनी।
1: बाबा परवेज जी मजाज ने रंग
0: जी जी जी बिस्मिल्लाह,
1: छोटी जी गल के
0: जी
1: आपने ने के लगी है चोट दिल में दिखा नहीं सकते,
0: हाय हाय हाय क्या कहने,
1: लगी है चोट दिल में दिखा नहीं सकते, भुलाना भी चाहे तो भुला नहीं सकते।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: लगी है चोट दिल में दिखा नहीं सकते, पुलाना भी चाहे पुला नहीं सकते, मोहब्बत का अंजाम यही होता है, मोहब्बत का अंजाम यही होता है, जिसके लिए तरसते हो उसे पा नहीं सकते।
0: बहुत खूब।
1: फिर आखने ने के जिस जिंदियां खबर ना सार लिये, जिस जिंदियां खबर ना सार लिये, मेरे मरण ते आया ते के आया, हट अपने प्यार लाए जेड़े जख्म भरन से आया ते के आया,
0: क्या कहने,
1: जो नजार हो के बंदा रब को फिर डरन से आया ते के आया, क्या करके तालब अमाल नामा और तोबा करन से आया ते के आया।
0: बहुत खूब।
1: आखिया फिर वैरी इश्क ने इंज दा वैर लाया, वैरी इश्क ने इंज दा वैर लाया, भूल गई अज ते कल मैनू, मैं ते प्यार दा हां बेमार यारो,
0: वाह
1: मैं ते प्यार दा हां बीमार यारो इस मरसा दसो कोई हाल मैंने
0: वाह जी वाह क्या कहने
1: रोते इश्क दे बैर विच मार दिते लहरा मारिया बार अचल मैनो
0: बहुत खूब
1: तू मैं मंत्री लख सुहा बैठा तू मैं मंत्री लख सुहा बैठा बंदे किरण दा आया नहीं वल मैनो
0: वाह
1: आखिया इतने पक्के विचार दे तोड़ना है इतने पक्के विचार दे तोड़ना है करा कि मैं इतबार में कच्चियां थे उत्ते झूठियां रब नी अलानता ने रहमत बरसी है सदा सच्चियां थे
0: हा
1: मजलूम दी फलक नु चीर जांदी हा मजलूम दी फलक नु चीर जांदी जुलम कदे ना करिए अकियां थे शिकवा गैरा नाल करा मैं क्या तालब
0: वाह
1: शिकवा गैरा नाल करा मैं क्या तालब सानू मां ना दे अपने सकियां थे
0: हाय हाय क्या कहने
1: आखिया इस दुनिया खेड शतरंज विचों इस दुनिया खेड शतरंज विचों असि सारिया बाजिया हार चले ग्राहक वलड़े पा छ्या पागलां दे उम्रां गुजार चले अग सुखन दी गई है सार सानू अग सुखन दी गई है सार सानू असि सुखन दा खोल बाजार चले शोक नजर दे तालब ने जाम पीते शोक नजर दे तालब ने जाम पीते ताई नजरा दे हो शिकार चले याद करते आशिक लोग जींदे जींदे किंज मरदे पहले हस हस दिल खो लेंदे दसदे मुख ने जदू मन मोह लेंदे हुसन मंदा दियां ने इंज यादां
0: कमाल कर दिया
1: मरण जीन दे वादे कर खान कसमा उधरों खान दे इधरों पलान कसमा इक नु आ कहंदे कोई नहीं होर मेरा इक नु जा कहंदे कसमे मैं तेरा
0: आए हाय
1: हुसन मंदा दियां आंदियां ने इंज यादां
0: इन यादां आए हाय क्या कहे
1: टक्कन सुनन अंदर भोले पाले आंदे
0: वाह
1: टक्कन सुनन अंदर भोले पाले आंदे रे वार इन्हां दे बड़े निराले आंदे
0: वाह जी वाह
1: दिल देना व्यापार करना फितरत इन्हां विच नहीं प्यार करना ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਯਾਦਾਂ
0: ਬਹੁਤ ਖੂਬ
1: ਆਖਿਆ ਆਸਮ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਜ਼ਖ ਸਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆਸਮ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਜ਼ਖ ਸਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਤਨ ਮਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫਰਾਗ ਦੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਐ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਐ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਐ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੁਸਨ ਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਯਾਦਾਂ
0: ਕਿਆ ਕਹਿਣੀ
1: ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ
0: अली हमजा
1: हमजा साहब आने ने के दर्दा वालियो सुनो एक दर्द मेरा
0: वाह
1: दर्दा वालियो सुनो एक दर्द मेरा मेरा किसे ने दर्द बनाया नहीं है चाहंदा हर कोई रे यार सवाई मेरी मैनु प्यार नाल किसे बुलाया नहीं
0: बहुत खूब
1: जेड़ा मिलिया वो मतलब परस्त मिलिया जेड़ा मिलिया वो मतलब परस्त मिलिया बिना मतलब ने किसे गल लाया नहीं है मेरे सिर ते गुरबत ना वेख साया कूने रिश्तियां भी अपना बनाया नहीं
0: आहा क्या कहने
1: खस्ता हालत गरीब ने वेख हफ्ती केड़ा बंदा जिस तीर चलाया नहीं है आखिया चलियां चलियां तुम सा लखा जमाने दिया मुंह ते पोलिया शोर मचाया नहीं है
0: बहुत खूब
1: मैंने चुप खा गई लोगों चुप खा गई रेया हो गया लब अलाया नहीं है जिगर छिलनी हो गया पर अली हमजा फिर भी रेम बेरहमान आया नहीं है
0: वाह कमाल का दी जी जी बिस्मिल्लाह बड़ी मेहरबानी सर बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और बाहर आई है और बड़ा ही अच्छा बड़ा ही खूबसूरत कलाम लेके आए और बड़ा ही नायाब और बड़ा ही खूबसूरत
1: जी
0: खुदा हाफिज़ सर बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत अच्छा लगा आप आए और बाहर आ गए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह
1: हाफिज़
0: जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप अपना जी आप अपना
1: और ना यहाँ क्याम करना
0: आहा
1: आप और ना यहाँ
0: क्याम करना
1: दिल सख्त बेजार खदा आफेज
0: हाय हाय
1: एक साबत के सांस जिस जिंदगी के टूटे पुख्ता इतबार खदा आफेज
0: हाय हाय हाय इसका मतलब है कि नक्शा
1: भी तो होली में बिके अरमान कल
0: भी वाह वाह क्या कहने
1: होली में बिके अरमान कल भी
0: वाह
1: मतलब परे बाजार खदा आफेज
0: वाह
1: दिल की असरत सुन सब अली हमजा और कार चले निसार
0: खुदा हाफिज़ जी और साढ़े शुएब भाई ने फोन किया पिछले आवर जो उन्होंने कहा कि इन्हें कि आपको दोबारा वेसन तो इसका मतलब है कि दबून खुदा हाफिज़ की दी है तो दोबारा भी अच्छा इन्हें खराब ठीक है बड़ी मेहरबानी शुक्रिया बड़ा शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर अल्लाह और जो खुदा हाफिज़ कह के हो ना तो दोबारा ही अच्छा है इन्हें खराब जी बहुत शुक्रिया सर रब रखा बहुत शुक्रिया भाई बहार आ गए वालेकुम अस्सलाम वो समझ गए माशाल्लाह क्या कहने ये थे हमारे मोहतरम भाई दोस्त और जितनी उनकी मैं और बहुत अभी हमें अच्छा लगे वो आप हमारा साथ देने और यहाँ पे हमारा साथ देने नदीम मंसूर साहब हमारा साथ देने वेलकम कहेंगे जी हाँ कहेंगे खुश आमदीद कहेंगे सत बिस्मिल्लाह कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: हजूर कैसी थी वीदा की
2: अल्लाह का शुक्र अल्लाह का करम आपकी दुआएं
0: माशाल्लाह माशाल्लाह आजकल छा गए मेरे भाई छा गए आजकल इतनी खूबसूरत गाना गुनगुना रहे हैं और शायरी भी टप्पे भी मैया भी और एक और खूबसूरत चीज़ आपने वो भी कर रहे हैं और बड़ा मेहनत कर रहे हैं और दिल लगा के काम कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत मेरे शुक्रिया मैं अदा करता हूँ आपका मेरे भाई जी
2: बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि प्यार बांटू
0: हाय हाय हाय प्यार बांटू वाह जी वाह वाह वाह क्या कहने बहुत शुक्रिया थैंक यू वाह
2: चलिए आप जो आ चुके हैं उनको भी सलाम जो आने वाले उनको भी
0: जी,
2: सलाम
0: जी
2: और आज आपके लिए कुछ अशआर लेके आया हूँ जो अपने ही लिखे हुए हैं
0: आपके लिखे हुए वाह वाह वाह वाह क्या कहने
2: तो वो पेश नजर है कि है मेरी हम सफर
0: वाह
2: तो ये कोशिश करता हूँ
0: जी जी

और तू मेरे दुख में मेरा सहारा बनती है, अंधेरी रात में चांद सा उजाला बनती है। रब ने जो तुझको मेरे मुकद्दर में लिखा, तुझे पाके लगा जैसे मुझे सब कुछ मिला। कभी मेरी खामोशी को भी समझ लेती है, बगैर कहे दिल की बात पढ़ लेती है। मेरे हर कदम पर तेरा साथ रहता है, इसीलिए ये दिल हर पल मुस्कुराता है।

लिए है दुनिया के सबसे हसीन तोहफे। अगर कभी रास्ते मुश्किल

मेरा हाथ तेरे हाथ से ना छूट पाए, गम की घटा आए या खुशियों की बहार, तेरा साथ रहे तो हर मौसम लगे बहार।

अपना ख्वाब बनाऊं, रब से यही मांगू हर दिन हर पहर, के मेरी जाने वफा रहे मेरी आखिरी उम्र तक हम सफर।

है जो रिश्ता रब ने मोहब्बत से अता किया, उस रिश्ते को दिल ने हमेशा के लिए अपना लिया। रब हमारी मोहब्बत को सदा सलामत रखे।

0: हम सफर रहे, लबों पे आखिरी सांस तक यही दुआ रहे, नदीम तेरा हम सफर रहे और तू नदीम की हम सफर रहे।
1: हाय हाय
0: आमीन।
1: हाय, क्या आमीन आमीन, क्या कहने क्या कहने मेरे। आपने तो दिल जीत लिया मेरे भाई, बहुत ही खूबसूरत शायरी आपने किया, गाना भी गुनगुनाया, बड़ा ही अच्छा लगा। देखो इसमें इतना प्यार है, मोहब्बत है, खलूस है, चाहत है, इसमें सब कुछ है। और मुझे वो गाना भी याद है आ गया, वो वारिस फिल्म का गाना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको, जब भी आप नेक्स्ट आवर में आएंगे, मेरे प्यार की हो उम्र इतनी, और वो जो गाना है बहुत खूबसूरत गाना है, ये गाना वहाँ पर फिट होगा माशाल्लाह, और बड़ा ही अच्छा है, खूबसूरत गीत है। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप आए और बाहर आ गए, कमाल का। और नेक्स्ट आवर में कोशिश करें और ये गाने गुनगुनाने की, क्योंकि ये गाना बड़ा खूबसूरत है और आपकी जो शायरी है, ओए होए होए, क्या कहने क्या कहने मेरे भाई, आपने खुद पे लिखा है, और हम आपको सलाम पेश करते हैं मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बराबर रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे नदीम मंसूर साहब, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत गुनगुनाया और बहुत प्यारा गीत है, और यहाँ पर छोटे ब्रेक करेंगे।
2: कोई मजदूरी नी, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, जे तुसा पुराना सोना बेचना है बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
2: चाचा ज्वेलर्स ओकलैंड ब्रेफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: राज वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत शुक्रिया और यहाँ पे हमारा साथ देने और डू फॉलो जाए सो ब्यूटीफुल लिसनर्स। और आपकी दो दिन जो कॉलर थी उनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है और यहाँ पे हमारा साथ देने जॉनी, वन एंड ओनली वन जॉनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: मसोने तो मनमोने की हाल चाल, ठीक है ठीक है आपकी?
1: मैं सदके जहां मैं वारी जहां
0: वाजी माशाल्लाह। आप बिजी बिजी जा रहे हैं और अपना जो ना वो गाना सुना दें, ये ना देर हो जाए। जी
1: चलो ठीक है ठीक है। सुनो

जी मैं टूटया बर तो तारा तेरी मेरी ओ टूट गई सोनी है जी मैं टूटया

0: कब तक तरसते रहेंगे तुझे पाने की हसरत में,
1: आहा
0: कब तक तरसते रहेंगे तुझे पाने की हसरत में, दे कोई ऐसा जख्म के हमारी सांस टूट जाए और तेरी जान छूट जाए।
1: आए, आए, आए, आए, आए, कमाल कमाल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कहने मेरे भाई। और ठीक है, ठीक है आपकी माशाल्लाह,
0: अल्लाह का करम, अल्लाह
1: माशाल्लाह, बड़े दिनों के बाद आपने हमें याद किया और बहुत अच्छा लगा।
0: पाकिस्तान
1: के वेलकम बाकी जी है, खुश आमदीद, वाह वाह वाह, क्या कहने। और जो गाना आपने गुनगुनाया बड़ा प्यारा गीत है, बड़ा ही खूबसूरत गीत है,
0: जल्दी जल्दी से गुनगुनाया,
1: मुझे पता है आप जल्दी में, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, ओके रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ में हमारा साथ देने हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, यहाँ में हमारे गुरु जी हैं, गिदन भाई हैं, वेलकम जी एन खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास ए वन, आप सुनाए ठीक है आपकी?
2: ठीक है,
1: अच्छा वाह जी वाह, क्या कहने जी।
2: तो एनीवे सबको मैं पहले सलाम बोल लूँ।
1: वालेकुम सलाम जी,
2: शकील भाई है, जावेद मेर भाई है
1: जी,
2: मोहम्मद हनीफ भाई है, सज्जाद भाई है
1: जी,
2: वाजिर भाई है हमारा, क्या उस्ताद आ गया ना चौधरी परियार भाई है, तो सजा पहलवान है, इकबाल भाई है, सईद एहसान है, पापा शफीक है, डॉक्टर मलिक साहब है, हमारा रफी जी है, रॉबिनसन है न्यूयॉर्क से
1: जी,
2: वो भी अभी बिजी है काम पे, वो
1: जी
2: उसने टेस्ट किया मेरे को,
1: क्या कहने।
2: फिर हमारा परवेश खान भाई है, हमारी बहना समीना खान है, आशिया जी है, अतिका जी है, सलीना जी है, समा जी है, क्रिंगटन से सिमी जी है, रेखा जी, हमीदा जी, सितारा जी, मिस्टर एंड मिसेस पटेल, जितने जितने सुनते सबको हमारा बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम सलाम, और सितारा जी हमारा साथ दे रही जी, वो भी हमारा साथ है जी,
2: उनको भी बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम सलाम,
2: सम्मान है दोस्ती,
1: हाय हाय क्या कहने,
2: दोस्ती कोई कहानी नहीं,
1: कोई कहानी नहीं, वाह
2: जो हर किसी को सुनाई जाए,
1: वाह
2: ये तो एहसास है
1: जो
2: दिल में चुपचाप बस जाए,
1: वाह वाह वाह क्या कहने।
2: कुछ दोस्त मुकद्दर से नहीं, दुआएं से मिलते हैं
1: बेशक,
2: जो खामोशी में भी दिल के सारे राज पढ़ लेते हैं,
1: क्या कहने।
2: वक्त चाहे कितना भी बदल जाए जिंदगी का,
1: वाह
2: सच्चे दोस्त का साथ कभी पुराना नहीं होता,
1: हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने, बहुत खूबसूरत, क्या कहने वाह।
2: तो चलो ये मुकेश जी का आज है, वो गुनगुना लूं मैं
1: जी जी जी, गो अहेड।

0: कमाल कर दिया मेरे भाई, बड़े दिनों के बाद ये मैंने गाना सुना, क्या गीत आपने सुनाया हमें और रिफ्रेश कर दिया हमारी मेमोरी को, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, और कमाल कर दिया, और आज ही वाकई कमाल कर दिया, और ये स्पेशली आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम थोड़ी देर के बाद भाभी जान से भी गाना सुनेंगे और यहाँ पे हमने ब्रेक लेनी है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप आए और इतने हमने कीमती वक्त दे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: Right time in the studio is 45 minutes past the 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ में छोटी सी ब्रेक होगी, ब्रेक के फौरन बाद फ्लैशबैक होगा, गीत होगा आप सब सुनने वालों के लिए होगा, और उसमें हमारी पापी जान भी गुनगुनाएंगे। और बहुत ही शुक्रिया आपका कि आप हमें याद करें, और जो फ़ोन कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जो करने वाले हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: ਜੁੱਤੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
1: ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
0: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
1: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੱਢੀ ਮਾਰੀ ਨੱਕਾ ਨਤੀਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਪਾਉਂਡਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨ ਸਲਾਣੇ ਨਾ 1 ਪਾਉਂਡ ਛਾਪਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ।
0: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ?
1: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਟੈਲੀਫੋਨ 01274488935।
2: Music. Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
4: राइट वेलकम बैक लिसनर। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे भाभी जी ने वेलकम कहेंगे, जी कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। हाउ आर यू भाभी जान?
5: फाइन थैंक यू भैया।
4: और भाभी जान और हमारे गुरु जी ने इतना खूबसूरत गीत गुनगुनाया और मुकेश की आवाज़ में बड़ा ही प्यारा गीत है, वेरी वेरी नाइस ब्यूटीफुल, क्या आवाज़ है, बड़ा ही खूबसूरत गीत है, बड़े दिनों के बाद मैंने गाना सुना है।
5: बहुत पुराना गाना था लेकिन अच्छा लगा।
4: अच्छा लगा जी जी।
5: जो वो पहला गिरधर से आया था भैया दूसरा?
4: हाँ वो जानी भाई थे, हमारे भाई हैं और उनका नाम जानी है और उन्होंने बहुत खूबसूरत गाना गुनगुनाया।
5: बहुत अच्छा लगा
4: और बहुत खूबसूरत गीत गुनगुनाया जी।
5: हमारा सलाम देना।
4: वालेकुम।
5: शकील भाई हमारा बल्ली वाला, जावेद भैया है, मोहम्मद रफी भैया है
4: जी,
5: साजिद भैया है, चौधरी फरियाद भैया
4: जी,
5: सज्जाद पहलवान, इकबाल भैया है
4: जी,
5: पापा सब भैया, जितने लोग आते हैं डॉक्टर मलिक साहब है
4: जी,
5: जितने लोग आते हैं सबको सबको मेरा सलाम।
4: वालेकुम सलाम।
5: का जी का बड़ा लिस्ट है ना, सबका सलाम
4: जी।
5: हमारा आशिया जी है, सतिका जी है, सलीना सिमी जी, शम्मा एक शम्मा जी को भी सलाम
4: जी,
5: रेखा जी है, हमीदा जी, सीतारा जी को
4: जी,
5: को मेरा खूब खूब सलाम है आपको।
4: वालेकुम सलाम। और आपके बाद वो सितारा जी आएंगी माशाल्लाह, वो हमारा साथ दे रही हैं जी।
5: अच्छा लगेगा, वो आई नहीं बहुत दिन से तो अच्छा लगेगा
4: जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
5: शायरी करती है, बात भी अच्छी,
4: बड़ी खूबसूरत बातें करती जी।
5: चलो मैं मोहम्मद रफी का पुराना गाना है
4: जी, गो अहेड।
5: हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करे ना याद, जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, एक जमाना था वो पल पर हम से रहे ना दूर।

मजबूर वो गम से लाख करे आजाद, सुन ले दर्द परी परियाद, अफसाना अफसाना हमको प्यार का दोहराते जाएंगे गाए जाएंगे, हुए हम जिनके लिए बर्बाद। मैं हूँ ऐसा दीपक जिसमें ना बाती नाते, ना बाती नाते, बचपन बीता मोहब्बतों का चार दिनों का खेल, चार दिनों का खेल, रहे ना दिल के नगर आबाद, बसिए इसमें किसी की याद, हम दिल को उनकी याद से बहलाए जा।

0: वो हमको चाहे करे ना याद, जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाए गे गाए जाएंगे।
1: वाह बाबी जान, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात, इतने खूबसूरत गीत लेके आ रहे हैं आज, बड़ा ही अच्छा लग रहा है और बड़ी खूबसूरत मेमोरी रिफ्रेश कर रहे हैं, और बड़े ही खूबसूरत दीदार का गीत था ये आपने सुनाया है, और बड़ी मशहूर मकबूल मूवी भी है, और दिलीप कुमार साहब की, वाह क्या कहने।
2: तो भाई अगर टाइम है तो मैं आपका फेवरेट एक
1: गुनगुना लूं। सर जी क्यों शर्मिंदा करते हैं जी, ये प्रोग्राम ही आपके लिए जी, गो हेड जी।
2: अच्छा, मैं शुरू करता हूँ
1: जी।

0: थैंक यू जी।
1: कमाल कमाल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जितनी भी मैं तारीफ करूं कम है। बिलीव करने के इतना खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया। कहते हैं ना कि आपने महफिल लूट ली मेरे भाई, बहुत ही खूबसूरत गाना, मेरा फेवरेट गाना था, और क्या गीत था, वाह।
0: आज रसिका जी नहीं है ना, उसकी वजह से मैंने आपको गाना।
1: वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने।

0: बहुत खूबसूरत गीत है और मैं गाना सुनाऊंगा नेक्स्ट आवर में, ये पूरा गाना सुनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं दोनों का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। रब रखा। ये थे हमारे और हमारी पापी जान स्मिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन दोनों का शुक्र अदा करता हूँ और यहाँ पे दोबारा इनके लिए ये पेश करने जा रहा हूँ। Wow, that was amazing, amazing गीत उन्होंने सुनाया हमें और बहुत अच्छा लगा। और जिन्होंने दोस्तों ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। और ये थे हमारे गिदन भाई और हमारे पापी जान सुमित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। और यहाँ पे हमारा साथ देने सतारा जी हैं ऑल द वे फ्रॉम ब्लैकबर्न नेल्सन से हैं और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और हमें अच्छा लग रहा है आप भी हमारा साथ कभी। और यहाँ पे हमारा साथ दे रही है और थोड़ी देर के बाद उनको हम यहाँ पे, पहली बात ये है कि उनको वेलकम कहेंगे, जीए कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको मैं बता रहा हूँ ना कि वो हमारी बेना आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम बेना जी।
1: बेना जी,
0: आपकी आवाज आ रही है, खूबसूरत आवाज आ रही जी। मैं कौन, किसकी आवाज है?
1: सोनी की आवाज है।
0: ओ सोनी जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही, क्या वजह है? बहुत ही कम आवाज आ रही है आपकी। आप अपना स्पीकर या अपनी जो आवाज थोड़ा ऊपर कर लेना। आवाज आ रही है तो बहुत ही, इसको लाइन को ड्रॉप करें, दोबारा फोन करें प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जजाकअल्लाह खैर। सोनी जी और बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं क्या वजह है कि वहाँ पे उनका मसला हो रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि उनकी लाइन जो है ना वहाँ पे थ्रू हो चुकी है और दोबारा और उनको हम कहेंगे, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड इवनिंग टू यू। और आपकी जो वो आवाज, मैं एक सेकंड में आपसे ऑफ एयर बात करता हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मसला हो रहा है उनके साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त बाबे अजीज़ हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और उनसे साथ मैं बात करूँगा ऑफ एयर क्योंकि कोई टेक्निकल इशू है उनके साथ। और क्योंकि यहाँ पर तो मसला सब ठीक ठाक है, फिट फाट है यहाँ पर, और हर मसला जो है ना वो ठीक है। और उनसे भी हम बात करेंगे और फिलहाल क्या करेंगे, ये गाना हमने पेश करना है, उनसे हम बात करेंगे, सोनी जी को हम वेलकम कहेंगे थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे हमने ये गीत पेश करना है, द ट्रक विल टेक मी टू द 10 o'clock न्यूज़। और देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। और ये आप सब दोस्तों के लिए पेश करने जा रहा हूँ, एंजॉय द ट्रैक।

0: Man, that was the hit of the hour. आपने पसंद किया, enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और यहाँ पे हमने करना है time check, which is very important.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, lady and gentlemen, boys and girl, और यहाँ पे time हो चुका है 7:10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in, keep it locked on with the Parviz Khan. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं सोनम जी हैं, और वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे. और इनकी जो गीत है, इनकी जो शायरी है, जो गीत गुनगुनाती हैं, बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ है. सोनम जी, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम. सोनम जी,
2: जी
0: आप गाना गुनगुनाएं.
2: थैंक यू.

0: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया,
0: कमाल कर दिया, कमाल
1: कर दिया, कमाल।
0: That was Sonam ji और Sonam ji ने karaoke कह रही हैं, गुनगुना रही हैं और karaoke जो ना it's not easy, believe करें, और इन्होंने कमाल कर दिया। और Sonam ji बहुत शुक्रिया आपका,
1: बहुत शुक्रिया आपका,
0: थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बहुत शुक्रिया। That was Sonam ji और इन्होंने कमाल कर दिया और हमें अच्छा लग रहा है। And yes, Sunrise Radio is always here for everybody. It doesn't matter whoever they are, wherever they are, and wherever they're from. और बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने इतना खूबसूरत गीत गुनगुनाया। और यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे। Keep it locked with the Sunrise Radio.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
0: Right, welcome back. और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं और हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त जिनकी मैं तारीफ करूँ कम है। और यहाँ भी हमारे चौधरी फरियाद सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह ना है करो प्लीज, इस तरह सा दिल नहीं ना, दिल क्या हाल है, अगे भी दिल बड़ा दुखे है, इस दुखे के नौ दिल ना दिखाओ, क्या हाल है, इस तरह ना है करो, खुदा हाफिज, बड़े प्यार, साढ़े वीर साढ़े भाई हो, तो अगे ही कहने के साढ़े भाई होने गिला किया, साढ़े शुएब भाई उन्हें कह के यार क्यों ऐसा खुदा हाफिज कह रहे, आपको पता है कि वो भी समझदार है और हम भी माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, हम भी स्टूडेंट है, क्या हाल है, और ये ऐसी बात ना किया करें और हमारे साथ ना किया, किसी और के साथ करना तो करें, हमारे साथ ना, चलो आप शेर शायरी करें जो भी है, आप आए हैं और हमारी खुशी है, हमारी खुश नसीबी है
3: जनाब साहब ने नजर से बिल्कुल शोएब भाई ने नजर शोएब ने उन्होंने याद किया
0: जी जी
3: बड़े खलूस नाल कुछ आखने तो असा तुसा नहीं गल ना टाली सकने ते ना उन्हें नहीं गल टाली सकने बल्कि पूरी महफिल नहीं गल ना टाली सकने
0: तुसा की सारे प्यार करने मोहब्बत करने जी
3: आखने ने के तू ना आया ना तेरा पैगाम आया
0: हाय हाय
3: तू ना आया ना तेरा पैगाम आया के बोले बनेरे ते जाग आ जा
0: हां
3: जलदा रहा जो तेरी उडीक अंदर
0: वाह
3: जलदा रहा जो तेरी उड़ीक अंदर बुझदा जांदा है दिल दा चराग आ जा
0: वाजी वाह
3: मेरिया आसां दा चमन मर जान लगा उजड़ चले आए दिल दा बाग आ जा मोजी चेहरे उते नजर आन लगे गहरे जर फराक दे लावे आ जा
0: वाजी वाह क्या कहने
3: अच्छा फिर है जिंदगी गमां दा कार लोको है जिंदगी गमां दा कार लोको खुशी कट दे गम ते गम आवन मुखलस हो जो अपने छड़ के ते औखे वक्त गरीबां दे कम आवन
0: वाह वाह वाह वाह वाह क्या
3: कहते एक दिन निकल जाती ऐसा ते एक दिन निकल जाती खरे और कितने इतने दम आवन दुखां गमां विच कर तू सबर मौजी मिट के जितने इतने जम आवन
0: बहुत खूब
3: आखिया गुजरे वेले दे याद करार आए गुजरे वेले दे याद करार आए होए अखियां विचों रवान अथरों सोचा आईया ते जी घबराण लगा सुखना विच ना मेरे समान अथरों मौजी मेरी खामोशी दा राह देवे मौजी मेरी खामोशी दा राह देवे बोलन बन के मेरी जबान अथरों आख्या रोंदा वेख के गमनाक नाई रोंदा वेख के गमनाक ताई आए अखियां विच पराए अथरों जिसके दिल विच दर्द ना दूजियां दा उसकी अख विच कदे ना आए अथरों
0: ਹੂੰ
3: ਤੇ ਗੇ ਚੋਰ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਨ लगे चोर दी अखियां पारी आवन दुखा बाज ना कोई वगाए अतरों मोजे सामने रोंदा यतीम नु उनता कहते मेरिया नैना फिर बरसाए अतरों।
0: कमाल कर दिया
3: आखिया चुप चुप के तीर चलान वाले आके आमने सामने मार चोटा बगल गिर तक के दुश्मन नाल तेनु मेरा दिल कीता इतार सार चोटा।
0: वाह वाह वाह
3: कदी इधर तकना कदी उधर तकना दिलदार ना मार बार बार चोटा जखम अंदरे मोजी ना बार दिसन कीते अंदरो अंदर फगार चोटा।
0: वाह
3: आखिरी शेर आखिया क्या किसान तो पूछ मैं रात सारी क्या कशां तू पुछ मैं राग सारी तेरी याद विच कितने वगाए अतरों इतना अबर भी बरसिया काटे होसी इतना अबर भी बरसिया काटो सी बद नसीब ने जितने बहाए अतरों कीता अपने मुकद्दर पे खूब मातम कीता अपने मुकद्दर पे खूब मातम तेरिया दर्दा वगाने सिखाए अतरों शिकवा किसे नो करा क्या बादल उन क्या बादल शिकवा किसे नो करा उनके बादल जद के अजलो नसीबा विच आए अथरों।
0: वाह वाह कमाल कर
3: रेस भाई ये शेर एक दा फिर
0: जी जी अच्छा
3: फिर तो नहीं मैं फिर रिपीट करने हैं
0: जी जी
3: क्या कशां तो पूछ में रात सारी
0: हाय हाय
3: खूबसूरत शेर
0: बड़ा ही खूबसूरत
3: क्या कशां तो पूछ में रात सारी और ये तेरी याद विच कितने बहाए अथरों इतना अबर भी बरसिया काटो सी बद नसीब ने जितने वगाए अथरो
0: क्या कहने क्या कहने
3: अपने मुकद्दर पे खूब मातम तेरिया दर्दा वगाने सखाए अथरो शिकवा किसे नो करा उनके बादल पजाद के अजलो नसीबा विच आए अथरो।
0: वाह वाह वाह वाह
3: परवेज अल्लाह सुनने वाला है
0: और इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ हम कलाम होंगे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह और आज की संडे की शाम है और बुध के रोज इंशाल्लाह मुलाकात होगी हवा के दो क्यों लोगों की डराने क्या है लोगों की डराया ना करो क्या डराने लोगों की क्या है मेरे फोने में फोन आ रहे हैं और क्या है डराया ना करो बड़ी मेहरबानी शुक्रिया तुम आयो लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया रब रब रखा था इंशाल्लाह आपके साथ गुफ्तगू की इंशाल्लाह बंद की रहो ठीक है ना खुल के उठी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज रब रखा रब रखा। ये थे हमारे मोहतरम भाई दोस्त जितने की मैं तारीफ करूँ कम है बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी हमें अच्छा लगे आपने हमें याद करें बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी बड़ा ही अच्छा लगा बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ है बड़ी प्यारी आवाज़ इनकी है और बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पे हमारे साथ दे रही हैं सोनम जी हैं और वेलकम कहेंगे जी हैं कहेंगे खुश आमदीद कहेंगे सत बिस्मिल्लाह कहेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और वेलकम जी अनु हेलो सोनम जी आपकी आवाज़ आ रही है हेलो मेरे ख्याल खामोशी होगी वहाँ पे और कोई कि यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम हमारे दिल अजीज हमारे बहुत प्यार करने वाले और बहुत अच्छा लग रहा है हमारे मुर्शिद आ गए और छा गए और मुर्शिद की बात हो रही है और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू
0: माशाल्लाह माशाल्लाह कैसी तुम्हें मेरे भाई की
1: अल्लाह की मेहरबानी शुक्र है आपकी दुआएं आप सुनाए कैसे हैं
0: अल्लाह पाक का शुक्र शुक्र आप आ गए और आगे से बेहतर हो गया हूँ और खून बढ़ गया माशाल्लाह और 2 किलो का खून और बढ़ गया और क्या कहेंगे इसके बारे में
1: बहुत अच्छा हुआ
0: वो भी फ्री में मिल गया फ्री में वैसे खर्चा करना पड़ता है ना जी
1: पहले तो दुआ सुनने वाले को मेरे
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू
1: वाजिद भाई है डॉक्टर मलिक साहब है चौधरी रुखसार साहब है चौधरी मुजफ्फर साहब है
0: जी
1: रिफरियात साहब है कितन भाई है सुमित्रा बहन है टीका जी सितारा जी सबको मैं तरसे अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम
1: सुनने वाले हैं सबको तो एक गजल है ये तो एक मिनट
0: कोई कोई बात नहीं और हमारा साथ दे रहे माशाल्लाह हमारे मुर्शिद हमारा साथ दे रहे
1: ओ, नाम है
0: जी जी
1: सुबह आलम शाह
0: जी अरशाद
1: वो कहते हैं जब से जाना है कि दुनिया में वफा कोई नहीं
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने मकरर जी मकरर वाह
1: जब से जाना है कि दुनिया
0: में कोई वफा नहीं
1: फिर किसी से भी रहा हमको गिला कोई नहीं
0: आए हाय हाय हाय हाय क्या कहने बहुत खूबसूरत वाह।
1: हर तरफ झूठ है, धोखा है, बेईमानी है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: और इखलास और मोहब्बत का सिला कोई नहीं।
0: सिला कोई नहीं। ओए हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहेंगे। वाह।
1: हर ज़बान पर गिले शिकवे तो बहुत हैं लेकिन
0: वाह।
1: हर्फ़े तहसीन नहीं।
0: वाह। हाय हाय हाय। वाह। जी।
1: ये दुआ कोई नहीं।
0: वाह। क्या कहनी।
1: अजनबी हो गए वो लोग जो अपने थे कभी।
0: वाह।
1: हमसे आज राहे मुरव्वत भी मिला कोई भी नहीं।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: मेरी खुशियों में मेरे साथ जमाना था मगर।
0: वाह। क्या कहनी
1: रवेल भाई।
0: जी जी।
1: मेरी खुशियों में मेरे साथ जमाना था मगर।
0: वाह।
1: मुश्किलें आए तो फिर साथ चला कोई नहीं।
0: मकर जी मकर, बहुत ही खूबसूरत, क्या कहने।
1: मेरी खुशियों में मेरे साथ जमाना था मगर।
0: वाह।
1: मुश्किलें आए तो फिर साथ चला कोई नहीं।
0: कोई नहीं। आए, आए, आए, क्या कहने।
1: हक परस्ती के बहुत दावे किए सब ने मगर।
0: वाह।
1: रास्ता छोड़ के बादल का गया कोई
0: नहीं। आय हाय हाय हाय। वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
1: जिंदगी बीत गई सारी मगर अपने लिए।
0: वाह।
1: हमको लम्हा कभी फुर्सत का मिला नहीं।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: बाकी शेर कहते हैं।
0: जी जी।
1: वो जो कहते थे तेरे बिन नहीं जी पाएंगे।
0: वाह।
1: वो जो कहते थे तेरे बिन नहीं जी पाएंगे। सारे जिंदा हैं अभी तक तो मरा कोई नहीं।
0: आए आए आए। मकर जी मकर, बहुत खूब बहुत खूब। वाह।
1: वो जो कहते थे तेरे बिन नहीं जी पाएंगे।
0: वाह।
1: सारे जिंदा हैं।
0: वाह।
1: अभी तक तो मरा
0: कोई नहीं। ओए होए, लाजवाब लाजवाब, क्या कहने। वाह। बहुत खूब बहुत खूब। और एक और हो जाए। जी जी। जी कोई कोई बात नहीं। जी
1: अकबर आबादी मैंने कही है।
0: जी।
1: वो कहते हैं दर्द में लब पर आह ना लाता ना लाना
0: ना लाना। जी।
1: दर्द में लब पर आह ना लाना सबके बस की बात
0: नहीं। वाह। क्या कहने।
1: हंसते हंसते इश्क छुपाना सबके बस की बात
0: नहीं। वाह। क्या कहने।
1: हमने एक जालिम को अपना दिल दे के ये जाना है।
0: हाँ।
1: पत्थर से शीशा टकराना सबके बस की बात
0: नहीं। वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: शामे अलम पलकों पर अपनी रोशन है इश्कों के दिए।
0: हाँ।
1: शामे अलम पलकों पर अपनी रोशन है इश्कों के दिए।
0: वाह।
1: चाहत का जश्न मनाना सबके बस
0: की बात नहीं। वाह वाह, क्या कहने।
1: दुनिया की परवाह ना की हमने प्यार किया उनसे।
0: आहा।
1: दोष हवा पे दीप जलाना सबके बस
0: की बात नहीं। वाह। क्या कहने क्या कहने।
1: गुलशन से गुल चुन के सजाना अपने घर को है आसान।
0: आहा।
1: गुलशन से गुल चुन के सजाना अपने घर को है आसान। सहरा सहरा फूल खिलाना सबके बस की
0: बात नहीं। बहुत खूब बहुत खूब।
1: हाय वो लब खामोश किसी के उफ वो किसी की नीची नजर।
0: वाह। क्या कहने।
1: कुछ भी न कह कर सब कुछ कह जाना सबके बस
0: की बात नहीं।
1: जो भी कहा वो करके दिखाया हमने मोहब्बत में मेहनत।
0: वाह।
1: जो भी कहा वो करके दिखाया हमने मोहब्बत है ना कहना और फिर करके दिखाना सबके बस की
0: बात नहीं। वाह वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। बहुत खूब बहुत खूब।
1: परवेज़ खान को गाने और गजलें सुनाना सबके बस
0: की बात नहीं। वाह वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। वाह जी वाह, कमाल ही कर दिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल महफिल वैसे ही लूट लिया, हर रोज़ ही लूटते हैं माशाल्लाह। और अच्छा लगता है जब ये प्रोग्राम शिक्र करते हैं। और माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और इतनी लाजवाब शायरी और पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आते हैं। और लाजवाब जब भी प्रोग्राम में शिरकत करते हैं कुछ ना कुछ नई होती है माशाल्लाह, खूबसूरत होती है माशाल्लाह।
1: थैंक यू, बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया खान। अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपके लिए। और यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ दे दें और हाय मोटिवेशन बात होगी यहाँ पे, गुफ्तगू होगी और हमें अच्छा लगेगा आप सब आ रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक होगी, आपने कहीं पे जाना नहीं है।

0: लिया कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio 100.6 FM, 103.2 FM across the West Yorkshire, and digital audio broadcasting. Me, aap sun rahe hain hamara program, or not forgetting in East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington. Me, hamara program suna ja raha hai aur sunte hain aap sab, aur wahan pe callers bhi aa rahe hain. Bahut shukriya aap sab ke bhi, aur yahan pe hamara saath de rahe hain. Unko welcome kahenge, jiye kahenge. खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे और हमारा साथ देने। सोनम जी वेलकम
3: जी,
2: हाउ आर यू? आर व्हाट अ अमेजिंग ट्रैक दैट यू हैव डन फॉर अस।
3: थैंक यू सो मच
2: जी, गो अहेड, ऑल योर्स।
3: थैंक यू, ऑल द वे फ्रॉम न्यूकासल।
2: आर यू फ्रॉम न्यूकासल? वाओ, व्हाट अमेजिंग अमेजिंग, वाह क्या कहने
3: जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच।

0: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जितनी भी मैं तारीफ करूंगा मैं, बहुत अच्छा लगा वो, क्या आवाज़ आपने पाई है, बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज़ है। कीप अप द गुड वर्क, और हम आपके साथ दोबारा हम कलाम होंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह वेडनेसडे इवनिंग, एंड यू कैन कम विद अ कपल ऑफ ट्रैक्स एंड दैट विल बी अप्रिशिएटेड, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द वैल्युएबल टाइम आउट टू मी, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारी तरफ से ये मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ, आई होप यू गोना एंजॉय दिस वन। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखें। रब रखा, थैंक यू वेरी मच फॉर वैल्युएबल टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा। दैट वाज सोनम जी ऑल द वे फ्रॉम न्यूकासल, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी हमारा साथ देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है, और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी की मैं तारीफ करूँ कम है। और ये हैं हमारे माशाल्लाह राय अजहर हुसैन साहब हैं, ऑल द वे फ्रॉम एडिनबरा से हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। और व्हाट अ ब्यूटीफुल जेंटलमैन, माशाल्लाह व्हाट अ ब्यूटीफुल जेंटलमैन, और व्हाट अ अमेजिंग जेंटलमैन। और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डॉक्टर साहब
1: जी,
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपका प्यार है, मोहब्बत है, खलूस है कि आप यहाँ में बैठे हुए हैं और हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं, माशाल्लाह कि आप इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, बड़ी इल्मी गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जी।
1: नहीं, आपके तमाम सुनने वाले मुझसे ज्यादा बेहतर पढ़े लिखे और साहिब इलम हैं, इतने इतने अच्छे कलाम लाते हैं, इतना इतना अच्छा खूबसूरत गाते हैं
0: जी।
1: तो हम तो सिर्फ हम जैसे तो क्या कहते हैं, एक एडप करने
0: वाले। नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात ना किया करें, एडप नहीं होता है। आप हम जो ना आपसे प्यार करते हैं, सुनने वाले आपसे प्यार करते हैं, एक आप मोटिवेशन बात करते हैं जी,
1: बड़ा पन है जी। असल में ना मैंने जो मैं जिंदगी के रुख को जरा बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर
0: जी, ऐसी ऐसी माशाल्लाह,
1: क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंसान जो है वो किताबों से नहीं, अपनी किताब से सीखता,
0: अपनी किताब से सीखता है, ऐसी है 100%।
1: इंसान खुद भी एक किताब है,
0: इंसानी किताब है वाकई।
1: तो वो गाहे गाहे इसे पढ़ा दीजिए, तो गाहे गाहे इंसान को अपनी किताब पढ़नी चाहिए।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या कहने
1: आपको। आप देखे ना, आप कभी गौर करें कि आप बैठे होते हैं तो अचानक आपके जहन में एक सोच आती है
0: जी,
1: कि यार मैं फलाना कर लूं, मैं ये ना कर
0: लूं,
1: कर लूं, मैं इधर ना चला जाऊं,
0: मैं उधर चला जाऊं,
1: ये थॉट कहीं से ट्रांसमिट तो हो रही है ना, जैसे
0: ये ऐसे ही होता है,
1: कहीं से चल रहा है
0: जी। क्या कहने,
1: आपका रेडियो चैनल भी तो चल रहा है ना,
0: हाँ, और सोचने की बात है कैसे चल रहा है, हाँ,
1: और कितने लाख ट्रांसिस्टर हैं, यूं ही हम उस फ्रीक्वेंसी पे उसको ट्यून करते हैं तो सनराइज आ जाता है।
0: जब
1: उसी फ्रीक्वेंसी को हम थोड़ा और छेड़ते हैं
0: तो कोई और आ जाता है, वाह वाह,
1: फिर कोई और चल जाता है, फिर कोई और। इसी तरह खुदा और इंसान के दरमियान भी चैनल है। आप जो जो रूह की पाकिजगी के साथ अपने रेडियो को ट्यून करते हैं,
0: वाह,
1: आप पर कई चैनल खुलते चले जाते
0: हैं। हाय बहुत गहरी बात आपने की,
1: और उसमें से खूबसूरत तरीन चीजें जो है वो बाहर आ रही होती है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: इंसानी जिंदगी में अपनी जात की प्योरिटी का एक ही फार्मूला है कि आप जितना अपनी जात को शफाफ कर लेंगे
0: जी,
1: आपको उस अपने अंदर की गहराई में से हीरे मोती मछलियां सब नजर आनी शुरू।
0: वाह क्या कहने, बहुत खूब, वाह बहुत खूब।
1: गहराई समंदरों में नहीं होती, गहराई आपकी आंखों के अंदर होती
0: है। हाय हाय, आपकी सोच की होती है, वाह क्या कहने, वाह।
1: सो इसलिए कहते हैं कि वो बहुत खूबसूरत शेर है कि सरसरी तुम जहान से गुजरे, वरना हर जहां जहान दीगर था।
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: इसमें वो ये कहते हैं कि भाई यार ये तुम थे पागल आदमी या बेवकूफ आदमी के जो ऐसे ही सरसरी जो है वो ऐसे ही गुजर गए जहान से, अगर तुम गौर करते तो हर कदम पे एक और जहान बसा हुआ।
0: आए हाय हाय, बहुत ही गहरा।
1: तुम गौर तो करते ना,
0: गौर तो करते,
1: गौर तो करते।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: जैसे मैंने मेरे ख्याल में आज से दो दो तीन साल पहले आपके साथ ही आपके प्रोग्राम में एक दफा वो पत्तों की बात,
0: पत्तों की बात की थी, अभी भी मुझे याद है, याद है, याद है,
1: याद है,
0: याद अभी भी याद है। वो क्या
1: वही है, वो एक एक मुशाहिदा है, इसीलिए मैं कहीं भी निकलता हूँ या जहाँ बैठता हूँ,
0: हाय हाय हाय,
1: क्योंकि मेरी फेवरेट जगह हैं तन्हाई वाली,
0: तन्हाई वाली, हाय हाय हाय हाय, वाह,
1: कहीं समंदर के
0: बैठ गया वाह,
1: क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा अपने अंदर झांकने का मौका देता
0: है, मौका देता है। वाह,
1: दुनिया की हसल बसल में तो आप ये काम नहीं कर सकते ना।
0: हाँ, ये क्या बात है, क्या बात है।
1: आप भाग रहे होते हैं हर वक्त,
0: ठीक
1: है ना
0: जी।
1: आप देख लें कि इंसान, इसीलिए कुरान ने फैसला कर दिया कि ये खसारे में है। वो
0: खसारे में, हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय।
1: अभी किसी ने सोचा है कि यार इतनी दौलत, इतने घर, इतनी गाड़ियां, इतने ओहदे, इतने रुतबे लेके भी खसारे में
0: है? खसारे में है, हाय हाय हाय हाय हाय। क्या कहने,
1: इसका कभी आपने नहीं सोचा होगा। आप एक, अब मैं आज आपको एक थॉट देता हूँ आपके सुनने वालों को,
0: जी जी,
1: तो जरा उस थॉट के अंदर रख के सोचिएगा तो आपको लगेगा कि यार खसारा ही खसारा।
0: क्या
1: अच्छा, वो थॉट क्या है
0: जी?
1: आप क्यों खसारे में हैं? आपको, आप फर्ज करें आपने जब अपना कैरियर शुरू किया तो आपकी सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि यार काश मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी आ जाए ना, तो बड़ी बात है,
0: बड़ी बात है।
1: मैं उस पे चढ़ के जाऊंगा, ड्यूटी करूंगा, धूप छांव से बचूंगा, बारिश से बचूंगा। अल्लाह ने आपको वो गाड़ी दे दी, जिस दिन वो गाड़ी आपके पास आ गई उसी दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया यार ये अगर कोई डिग्गी वाली आ जाए तो बड़ी बात,
0: बड़ी बात है, बड़ी बात है। क्या कहने,
1: यानी कि क्या हुआ कि वो जो चीज जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे थे कि मुझे वो मिल जाए, जो ही खुदा ने आपको दी, आपने साथ ही अगली गेम डाल दी।
0: अभी अगली गेम डाल दी जी।
1: इसका मतलब है कि आप फिर खसारे में
0: चले गए,
1: भागना शुरू कर दिया
0: जी। जी,
1: इसी तरह आपने बड़ी ख्वाहिश की कि यार काश एक घर मॉर्गेज पे कहीं मिल जाता या नकदों पे या कैश पे मिल जाता तो बस मेरी जिंदगी का क्या बात है, सब ख्वाब पूरे हो जाते।
0: वाह वाह वाह, क्या
1: ही होता है कि वो घर मिलता है आप दूसरा बनाने के चक्कर में शुरू हो जाते।
0: जी, ऐसी है जिंदगी, ऐसी। वाह,
1: ठीक है ना
0: जी।
1: आप यानी कि आप उनको, उसने सुजुकी दे दिया, आप BMW के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर वो जब BMW दे देता है तो आप कहते हैं मेरे पास जहाज हो जाए।
0: हाय हाय हाय हाय,
1: जहाज दे देता है तो आप कहते हैं यार एक हेलीकॉप्टर भी घर की छत पे उतर।
0: नेवर एंडिंग।
1: आप इसीलिए उस खुदा ने पहले ही कह दिया कि सब खसारे में हो,
0: खसारे में। हाय हाय हाय हाय हाय हाय, वाह क्या कहने।
1: इससे बचता वही है जो इन सब खसारों को माइनस करके जिसको करार आ जाता है,
0: करार आ जाता है। बहुत खूबसूरत, वाह वाह वाह वाह, क्या अल्फाज में चुना है। वाह
1: जी, मैं एक दफा ना एक जलेबी लेने के लिए खड़ा हुआ था
0: जी।
1: तो जलेबी वाले को मैंने कहा जरा यार ताजी जलेबियां निकाल दो ना।
0: अच्छा,
1: अब वो जलेबी वाला क्या था, उस शख्स ने मुझे जिंदगी की ऐसी एक बात समझाई
0: जी।
1: मैं यकीन करें कि मैं 1000 किताबें पढ़ के वो बात ना समझ सका जो उस एक जलेबी वाले ने मुझे एक सेकंड में समझा दी
0: जी।
1: उसने जो ही जलेबियां डाली ना कड़कते हुए
0: घी
1: में
0: जी,
1: तो वो जनाब अली कुछ देर तड़पती रही तो अखीर ना साइड पे हो गई। तो मैंने उससे कहा चाचा ये आपने डाली है ये काफी देर पकी है तो फिर ये उधर क्यों चली गई है साइड पे
0: जी।
1: तो उन्होंने मुझे एक ही फिक्रा कहा, कहना पुत्र जेड़ी छापा भी गांधी वो कंडे लग
0: जाते।
1: इस पूरे फिक्रे ने पूरी सदियां
0: बांधी। वाह वाह वाह, एक फिक्रे में
1: जाते हैं आप कंडे लग जाते हैं।
0: ओई, ओई।
1: कि आप किनारे लग जाते,
0: आप किनारे लग जाते हैं। ओई, ओई, ओई, ओई, ओई, ओई, ओई।
1: इसीलिए तमाम जो थे अल्लाह के बुजुर्ग और जो अल्लाह के लोग थे
0: जी, जी।
1: या जिनको हम कहते हैं बरगुजीदा
0: जी,
1: वो क्यों ये दुआ मांगते थे कि ऐ खुदा मेरे से ख्वाहिश खत्म कर दे।
0: वाह,
1: हजरत अली का भी कॉल यही रहा कि ऐ खुदा हमसे ख्वाहिश खत्म कर दो।
0: माशाल्लाह, क्या कहने।
1: तो जाहिर है जब ख्वाहिश खत्म हो जाए तो फिर आप को करार आ जाता है। तो चलें, सबके सब सुनने वालों को मेरी तरफ से
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने। मोटिवेशन जो बात करते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। जैसे आपने मुझे लास्ट टाइम जो बात आपने की थी, वो जो साफ पानी और जो गंदा पानी, और वो एक साइड पे
1: इंसानी,
0: वाह क्या कहने,
1: इंसानी शऊर के
0: वाले। हाय हाय हाय हाय,
1: देखे ना वही बर्फ जब आप पैदा होते हैं तो एक ऐसी बर्फ होती है जिसपे कुत्ता बिल्ला कोई भी आके अपनी दे, वो बर्फ कुछ नहीं बिगाड़ सकती
0: जी।
1: लेकिन जो ही उस पे सूरज की तमाजत पड़ती है, वालदैन की हरारत पड़ती है, वालदैन उस बर्फ को पिघलाते हैं, सोना बनाते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो जब वो पानी बन के लहरों की शक्ल में से पहाड़ों से उतरता है तो उसके रास्ते में जो चीज आती है उसको तहस नहस कर
0: दो। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने।
1: यही जिंदगी का एक असूल,
0: यही जिंदगी का असूल है।
1: एक बर्फ की मानद होती है, उस पे जब इल्म का सूरज पड़ता है तो वो पिघलता है, पिघल के जब वो पानी बनता है तो वो नदी बनती है, होती है, नदी से फिर वो नाले
0: बनते हैं,
1: नाले से फिर वो दरिया
0: समुद्र बनते हैं। वाह जी वाह, क्या कहने, क्या क्या कहने, क्या कहने। आपकी सोच को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जो आपकी जो डीप थिंकिंग है, वाओ ब्यूटीफुल अमेजिंग अमेजिंग। और जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है माशाल्लाह। और क्या कहेंगे आपकी जो खूबसूरती, जो आपका अंदाज है बहुत प्यारा अंदाज है, बड़ी खूबसूरत, बड़े प्यार, बड़े खूबसूरत अंदाज से आप बयानी करते हैं।
1: नहीं नहीं आपके सुनने वालों की
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, मोटिवेशन बातें होती हैं आपकी माशाल्लाह। क्या की बात,
1: मेरा सिर्फ ये होता है कि मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी बात करते चले जाएं, अगर आपकी बात से किसी एक रूह ने भी,
0: एक रूह ने भी आए हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
1: आपको आपका मिल गया अजर, बस खत्म।
0: ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही
1: मिल गया।
0: वाह,
1: मेरी किसी बात से या मेरी किसी चीज से किसी एक बंदे ने भी कोई फायदा उठा लिया,
0: वाह,
1: तो उस दिन मेरा खुदा तो मुझसे राजी
0: हो राजी हो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखो, ये सोचने की बात है। और ये जो अल्फाज आपने कहे, और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे, और जो इल्म में और इजाफा दे माशाल्लाह आपको, और इल्म में माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सर। और आपको मैं हवा के दोष में मैं सलूट करता हूँ यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम।
2: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right time in the studio is 43 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown, keep a lockdown with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी नन्ही मिनट की ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे हमारे एक और खूबसूरत भाई आ चुके हैं, और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। वो भी मेरे भाई हैं, और जितनी भी मैं बेशक, और ये हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे मोहतरम भी हैं, हमारे दिल अजीज भी हैं, हमारे मौसम भी हैं, हमारे मुश्ताक भी हैं। और वो आएंगे तो वो आपको पता लग जाएगा वो कौन है जिसका इंतज़ार था, वो आ गए। और बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, यहाँ भी छोटी सी ब्रेक करेंगे।
3: पुराना सुना बेचना है, बहुत चंगे रेट पर देने ने।
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
3: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-488-935।
5: This October, Bollywood meets Bhangra in Manchester. In-house Productions presents Bollywood meets Bhangra 4, featuring Dutch sensation Jenna Jia performing live. Enjoy Bollywood, Bhangra, hip-hop, Afro and R&B, plus DJs, dancers and dhol players. Friday the 23rd of October, from 9 p.m. till late, at Area, 50 Sackville Street, Manchester. Entry is free. Photo ID required. For information, call 0775-3363-926. Official radio partner, Sunrise Radio.
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio on 100.6 FM, 103.2 FM across the West Yorkshire. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है. और ये है हमारे मीठा जी हैं, रुखसार भाई हैं, ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर से. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چشم روشن دل ماشا با کمال لاجواب با تا بہت اعلی با عزت با وقار با ذوق با شوق ہر یہ نہایت قابل عزت قابل احترام قابل رفعت قابل عظمت اور میرے بہت ہی پیارے بھائی چیمپئن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد.
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातहू. या अली मदद. पीर मौला अली मदद.
1: हुजूर कैसे हैं, तबीयत कैसी है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्लाह पाक का शुक्र शुक्र करम करम. आप सुनाए, आपकी तबीयत कैसी है मेरे भाई की?
1: अल्लाह ताला का खास करम है और माशाल्लाह आप जैसे अजीम लोगों की, आप जैसे महान लोगों की और आप जैसे कदरदान जो लोग होते हैं ना, उनकी दुआओं से मैं अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आपकी दुआएं हैं.
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया. आप आए और बाहर आ गई है और आज हमारे लिए माशाल्लाह कौन सी बात लेके आए हैं, कौन सा गीत लेके आए?
1: माशाल्लाह सर, मेरा ख्याल है कि आप ज्यादा तरसे हुए हैं.
0: वो पानी के लिए मैं कह रहा हूँ कि क्या करें यार मेरे भाई. आप जब मैं आपका नाम देखता हूँ ना यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ कि मेरा भाई आ गया है तो कौन क्यों सुनेंगे. तो वो भी आप ही आ गए माशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी ये खूबसूरती है. और क्योंकि आपके बाद यहाँ पे हमारे आयुष जवान साहब वो भी पीछे खड़े हुए कि क्या हाल है, वो भी आ गए. जी
1: बिस्मिल्लाह माशाल्लाह. जब कहते हैं ना कि अजीम लोग या बड़े लोग आ जाए तो छोटों को चाहिए कि वो सीट छोड़.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं अपना अपना आप खूबसूरत है. आप हमारे घर में आए, दरबार पे आए और हमें कुछ सुनाएं और खूबसूरत तोहफा लेके जाएं.
1: सर माशाल्लाह ये तो मेरे लिए बहुत आजाद की बात है कि मैं आपके दरबार में आऊं. जैसे आप बोले हैं कि यानी कि वो हमारे मुश्ताक हैं, मैं वाकई आपका मुश्ताक हूं. यकीन करें मैं तो आपका लफ्ज़ बहुत बड़े गौर से सुनता हूं.
0: आज जो ना थोड़ा मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा जो करूँ ना कि तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कहा कि बातों में लगा रहूंगा तो पीछे से वो आयुष वहाँ कहेंगे यार ये दोनों बातें कर रहे हैं तो मुझे कब टाइम मिलेगा. तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा भाई आ गया है क्योंकि वो मेरा भाई लाडला है, वो मुझे समझता है. और क्या आगे पहले बात कर रहे थे हमारे राय अजर साहब और उन्होंने कहा कि जिंदगी जो ना एक खूबसूरत है और उस जिंदगी को कैसे इंजॉय करने चाहिए. तो मैंने कहा कि मेरा भाई पीछे आ गया तो वो भी मुझे भाई मुझे इतनी अच्छी गुफ्तगू करता है, इतनी अच्छी बातें करता है तो हम उनसे सुनेंगे
1: माशाल्लाह. क्योंकि पता क्या, अब जो अस्सी का माशाल्लाह जिस शख्सियत का और जिस लहजे का आपने बता दिया कि वो पीछे इंतजार कर रहे हैं, तो अगर मैं बातों में लग गया ना तो
0: नहीं आप अपना जो शायरी करें और गाना सुनाएं और ये ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा आपको. मुझे नेक्स्ट आवर में भी प्रोग्राम करना पड़े मैं कर लूंगा, कोई मसला नहीं है. कोई मसला नहीं.
1: आपको सलामत रखे, आप शाद रखे. तो क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं है
0: जी.
1: मैं उनको ज्यादा ना करूँ. मेरी तरफ से जो अतीका पीकी या चौधरी फरियाद साहब की जो लिस्ट है ना, सभी को मेरी तरफ से मोहब्बतों भरा चाहतों भरा उल्फत भरा नायत अकीदत नायत काम नायत मोहब्बत से बहुत बहुत सलाम. ठीक है
0: जी.
1: तो क्योंकि मुझे पता चला था तो आपने भी माशाल्लाह मुझे फोन करके, पहले तो आपका मैं बहुत ही ज्यादा मशकूर और ममनून हूँ बेहद कि आपने मुझे फोन करके बकायदा. मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने बताया था कि महबूब अल्लाह साहब की वालदा जो है दुनिया फानी से रुखसत हो गई हैं. तो पहले तो आपका मैं शुक्र गुजार हूँ कि आपने मुझे आगाह किया. तो मैंने यकीन
0: पता है कि पहली बात यह होती है कि दुख जो होता है ना वहाँ पे जहाँ पे फौतगी होती है ना, तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि वहाँ पे जाएं, वो हमारा जानने वाला है और वहाँ पे जाके वहाँ पे उनके साथ जो ना दुख बांटें. और हमने सोचा कि आप हमारे भाई हैं जो हमारे जानने वाले, तो उनको सबको मैं बताया कि यहाँ पे यार देखो ये मसला हुआ है तो आप उनको फ़ोन करें, थोड़ा जा उनकी जो ना दुआ खैर करें. और दुआ खैर करने के लिए बहुत ही यही टाइम होता है और बाद में तो हम आगे पीछे जाना होता है, ये होता है वो होता है. तो ये जो मौके पे होना तब खूबसूरती होती है.
1: बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप. वो जानने वाले नहीं है, वो हमारे भाई हैं.
0: नहीं वो मेरी फैमिली है. बिलीव करें कि मैं उनको मैं फैमिली के मानता हूँ. जो भी मेरे साथ जो बैठते उठते हैं ना तो वो मेरी फैमिली मेरे अपने.
1: अच्छा जी बिल्कुल। वो देखो अगर किसी का बंदा दुखों का कोई मदावा कर लेता है तो उसका थोड़ा सा दुख जो है ना वो हल्का हो जाता है। कहता है कि मेरे यार साथ जिसने दुख बांटे हैं वो कहते हैं कि किसी की खुशी पे ना जाएं तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है। अगर किसी के दुख में जिंदा ना बंदा शामिल हो तो उसको तकलीफ होती है
0: जी।
1: ये वाक्य हो गया वो नहीं
0: ये बंदे के आजकल जो ना वो मैं माजर चाह रहा हूँ कि ये नहीं मैं कह रहा सब ऐसे ही है और कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको जब ऐसी बात होती ना तो उनको परवाह नहीं होती उनको सोच नहीं होती। देखो एक मेरी बहन है और उनके घर में जो ना एक बिल्ली का बच्चा था तो 17 साल जो ना उनके 17 ईयर्स उन्होंने उस बिल्ली को पाला है बच्चे को पाला है पर बच्चा माशाल्लाह वो 17 साल का हुआ है तो वो आज जो ना वो अल्लाह के पास चला गया तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो वो रो रही थी उनके बिल्ली का बच्चा था वो रो रहे क्योंकि वो उनका इच्छा था वो उनका जो वो एहसास था वो उनका एक फैमिली के मेम्बरान था ये नहीं कि बिल्ली का बच्चा था। और मैं देखता हूँ कि देखो ये होती है मोहब्बत ये होता है प्यार। देखो कुछ चीज़ पाली उन्होंने सोचा समझा उस बहन को मैं सलाम पेश करता हूँ कि बहन जिन्होंने उन्हें दुख बनाया और शोक बनाया उन्होंने कि यार मेरी बिल्ली का बच्चा वो मेरा बेबी था।
1: सही बात है बात बहुत लंबी हो जाएगी। आप यकीन करके जब कुर्बानी होती है ना कि बंदा एक हफ्ते के लिए दो हफ्ते के लिए बकरा या कोई बच्चा या कोई गाय या कोई जानवर लेता है ना जब के हले तो बच्चे उसे इतना मोहब्बत इतना प्यार करते हैं जब जबा होने के लिए जाता है तो वो बच्चे रो पड़ते हैं।
0: हाय हाय हाय ऐसे ही होता है हमने बचपन में ऐसे किया हमने ऐसे किया मेरे भाई ऐसे किया।
1: तो सॉरी मैं जो हमारे पीछे हस्ती है ना मैं वो शर्मसार हूँ कि क्योंकि टाइम इतना ही है तो ये मैं महबूब लाई के वालदा की जो तैयत पेशा अल्लाह ताला उनको जो मुझे जगह था
0: आमीन आमीन आमीन
1: जिनकी माए इस दुनिया पानी से चली गई हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में अल्लाह मकाम ता फरमाए
0: आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन
1: जनाबे सैयदा फातिमतु
0: ज़हरा
1: हदीसों में शामिल फरमाए
0: आमीन आमीन आमीन
1: दुख में बराबर के शरीक हैं। मैं माँ की शान में एक थोड़ी सी जो है ना वो क्योंकि दुख जो है ना यकीन करें माए माए होती है
0: माए माए होती है जी।
1: तो मैं जो माए सुन रही है जो बहने सुन रही हैं जो बे औलाद है ना अल्लाह ताला दुआ करता हूँ दस्ते दुआ के अल्लाह ताला उनको हयाती वाले फरजान ता फरमा है जी। अपने बच्चों की देखे तो जल्दी जल्दी जनाब वो शेर लिखता है अब कहाँ मुझको ये घर लगता है माँ बिना गैर का डर लगता है
0: हाय हाय हाय हाय वाह
1: कब्र तक साथ चलेगा मेरे गम तीर और दर्द जिगर लगता है
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय
1: माँ बिना जिंदगी यूं लगती है जैसे पतझड़ में शजर लगता है
0: हाय हाय हाय हाय हाय क्या
1: जम गए अश्क मेरे चेहरे पर चेहरा घर खुशक हो तर लगता है
0: हाय हाय हाय

0: से अब कहां नूरे नजर लगता है।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने मेरे भाई का, क्या कहने। मैं भी दुखी हो गया हूँ और यहाँ पे बह के, और क्योंकि जो माँ माँ ही होती है और आपका जो अपने फैमिली का दुख होता है वो जो ना क्या कहेंगे उसके बारे में। चलो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का आप आए, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, और एक दो अल्फाज यहाँ पे आपने सुनने हैं और ये आपके लिए।

0: क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप आए बाहर आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच, अल्लाह
0: आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे भाई, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, ओके रब रखा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चौधरी इकरार भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ममनून का, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं अयूब जौहान साहब हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया इनका, ऑर्डर्स में हमारा तल्लुक रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अयूब जौहान, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हुजूर कैसे तबीयत आपकी?
2: बस मेरी तबीयत ठीक ठाक है
0: जी,
2: टाइम मेरा है ना पीछे थोड़ा सा ही है
0: जी,
2: तो जो भी गम में अल्लाह ताला उनको सब्र दे,
0: आमीन।
2: कुछ कह रहे थे वो महबूब लाई साहब की वालदा फौत हो गई
0: जी जी
2: जी, तो अल्लाह ताला उनको सब्र दे और
0: आमीन,
2: वालदा को जन्नत नसीब फरमाए,
0: आमीन आमीन आमीन।
2: तो मैं कुछ इशार सुना देता हूँ
0: जी जी,
2: किस तरह जीता हूँ और मरता हूँ,
0: हाय हाय हाय,
2: मैं अपने साय से भी डरता हूँ,
0: वाह,
2: रोक लेता हूँ चलती हुई इन हवाओं का जोर, रोक लेता हूँ चलती हुई इन हवाओं का जोर, तेरे आराम किए तेरे आराम का कितना प्यार करता हूँ,
0: हाय हाय क्या कहने,
2: आएगा कौन मेरे ख्वाबों की ताबीर बनकर,
0: वाह,
2: रात भर सोचता हूँ सोता नहीं जागता रहता हूँ,
0: बहुत खूब,
2: दिन भी बढ़ जाएगा मेरी इस मोहब्बत की कभी के दिल से दूर मैं नफरत को हटा कर रखता हूँ,
0: वाह,
2: प्यास लगती है मेरे दिल को तेरे प्यार की जब मैं छुपके से पी कर आंसू गुजारा करता हूँ,
0: क्या कह ली,
2: आखिरी वक्त है खान अब तो टकराओ ना, थाम लो हाथ मेरा मैं तुम पे मरता हूँ,
0: बहुत खूब,
2: ये कोई डॉक्टर कमरान खान साहब से
0: जी जी, बहुत खूब शायरी है, बहुत खूब जी,
2: तो सबको हमारी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम,
0: वालेकुम सलाम,
2: अल्लाह ताला सबको सब्र दे
0: जी, आमीन,
2: जितने भी गम में है
0: जी,
2: और चौधरी फरियाद साहब को और चौधरी मुसफर साहब को,
0: मुसफर
2: साहब को भी मोहब्बत भरा सलाम,
0: वालेकुम सलाम,
2: इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, और ये थे हमारे अयूब जौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, बड़ी खूबसूरत हस्ती हैं हमारी, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों के, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ हैं, अभी मुझे फ़ोन कर रहे हैं, तो प्लीज़ कुड यू ड्रॉप योर कॉल्स, आई एम नॉट गोइंग टू बी आंसरिंग एनी कॉल्स नाउ, क्योंकि घर जाने का टाइम हो चुका है, और अभी मैं भी दुख में हो गया हूँ, और क्या कहेंगे, क्योंकि माँ ऐसी चीज़ है, क्या कहें, कोई भी फरियाद, जो भी कोई भी हो, और घर का हो, कोई भी मेहमान हो, कोई भी हो, डज मैटर हु एवरी चीज़ है, डर तो होता है ना मेरे भाई, उनसे पूछें जब कोई घर में चला जाता है, उनसे पूछें, और उनसे क्या के पूछेंगे, और ये जो दर्द है, और हर बंदा ये समझ नहीं सकता है और ना समझेगा, और थैंक यू वेरी मच, आप सब दोस्तों का प्यार मोहब्बत है, चाहत है, खलूस है, आपके पास माँ है उसकी खिदमतदारी करें, आपके पास बाप है उसकी खिदमतदारी करें, हम ही रवाई प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते इंशाल्लाह जल्द, ऑन वेंसडे इवनिंग बिटवीन आवर्स 8 एंड 11, अल्लाह हाफिज़, ऑन शब खैर, ऑन गॉड ब्लेस यू ऑल।

0: आज सेठ रामलाल हो गया
1: है? वो कैसे?
0: घर घर में उसी की चर्चा है, हर जुबान पर उसका नाम है, सब सनराइज रेडियो का काम है।
1: मगर कैसे?
0: एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, अगर धन कमाना है तो अपना बिजनेस एडवर्टाइज कराइए। सनराइज रेडियो पर आइए, नंबर मिलाइए 735043। सनराइज रेडियो।